पार युग की पोरा पुरुषानक के मर सही कोरा दुनिया भी बफा बिजिक चेर बेरा जगनी अड़ी।

दार युग की पोरा पुरुषान के मर सही कोरा दुनिया भी बफा बिचिक तेर बेरा जख्मी अरे समय।